नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 अगस्त महीने की 2 तारीख व दिन है रविवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री हेमंता सूर्यारी और सुश्री शिका देका, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुद्ध बर्मन, मनपा में उद्घोषक श्री सांगी ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किजांग लामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूं।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तमाम केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: the headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Kerala. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
0: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
0: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं।

0: पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता

0: नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो के

इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे ब्रह्मदुंगचुंग मटके अनि संतन वांगमो और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत ब्रह्म दुंगचुंग मठ के अनी समतन वांगमो और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, तो इसके साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 3:01 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद मणिपुरी आधुनिक गीतों का विद्यापति शर्मा और अन्य गायकों के आवाजों में। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत चंद मणिपुरी आधुनिक गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। श्रोताओं, नीचे जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक।

0: 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जेएनवी तवांग के नवी कक्षा के छात्र कुमारी संगे चुजुम देरू से स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। परंपरा और संस्कार से ही बनती है असली महानता हमारी। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं कुमारी संगे जोजुम देरू, पीएमसी जेएनवी तवांग, कक्षा 9वीं की छात्रा। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व पर है। हर समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। यह पहचान उसकी संस्कृति से बनती है। जब हम कहते हैं स्थानीय संस्कृति, तो इसका मतलब है कि हमारे गांव, शहर या प्रदेश की परंपराएं, रीति रिवाज, लोक कला, लोकगीत, पहनावा, त्यौहार और भाषा, यह हमारी पहचान और गौरव को दर्शाती है। स्थानीय संस्कृति हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और उन्होंने हमें कौन से संस्कार दिए हैं। जब हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, तो हमें अपने देश और समाज पर गर्व महसूस होता है। आज के आधुनिक युग में हम नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। यह जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम विदेशी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपनी भाषा और परंपराओं से दूर हो जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। स्थानीय संस्कृति का महत्व केवल हमारी पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें नैतिकता, भाईचारे और एकता भी सिखाती है। हमारे त्योहार हमें मिलजुल कर रहना भी सिखाती है, और हमारी परंपराएं बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम करना सिखाती है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। हस्तशिल्प, लोक कला, पारंपरिक भोजन और लोक नृत्य देश विदेश के लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे पर्यटन बढ़ता है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्थानीय संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी सिखाती है। हमारे कई रीति रिवाज पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जल, जंगल और भूमि की रक्षा हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को बचाना है, तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपने त्योहार को पूरे उत्साह से मनाना चाहिए और अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को अपनाए और उस पर गर्व करें। संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, स्थानीय परंपरा ही है देश का सार। नई पीढ़ी को इसे समझाए, अपनी पहचान को जीवंत बनाए, भारत को सशक्त और मजबूत बनाए, देश के विकास में इसका मान बढ़ाए, देश के विकास में इसका मान बढ़ाए। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पीएम श्री जेएनवी तवांग के नवी कक्षा के छात्र कुमारी संगे चुजुम देरू से स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत चंद मणिपुरी आधुनिक गीतों का विद्यापति शर्मा और अन्य गायकों के आवाजों में। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम 107.2 मीटर यानी

श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:36 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। आज इस कार्यक्रम का पहला गीत आप आनंद लेंगे, सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में यह गीत, और इस गीत के गीतकार हैं सवानंद किरकिरे तथा संगीत संयोजन है अजय अतुल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आनंद लेते हैं राबता फिल्म से आतिफ असलम की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है जैम 8 ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए अब आनंद लेते हैं गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में यह गीत। इस गीत के गीतकार हैं सवानंद किरकिरे तथा संगीत संयोजन है अमित त्रिवेदी।

रॉय फिल्म से यह बाना लेते हैं मीट ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर के युगल आवाजों में यह गीत। इस गीत के गीतकार है कुमार तथा संगीतकार है मीट ब्रदर्स।

ओम शांति ओम फिल्म से या ये बाना लेते हैं के आवाज में या गीत विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत के साथ ही नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस वक्त संध्या के 4 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है हमारा मासिक कार्यक्रम महिला जगत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे शिक्षा संस्कार तथा शिष्टाचार विषय पर एक वार्ता। इस वार्ता के लेखिका हैं शोभा शर्मा तथा कार्यक्रम के सूत्रधार है सतिम यांगचिन। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला जगत।
1: आकाशवाणी तवंग से हमारा मासिक कार्यक्रम महिला जगत सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। श्रोताओं, कहा गया है कि आत्मा मानव रूपी वृक्ष की जड़ है तो मन तना है, शरीर शाखाएं और पत्तियां स्वरूप है। पत्तियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को ग्रहण कर पूरे पेड़ का पोषण करती है। तना भी महत्वपूर्ण है किंतु यदि जड़ों को सिंचा न जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो इसी पर आधारित हमारी आज की वार्ता का विषय है शिक्षा संस्कार तथा शिष्टाचार। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। इस धन को जितना ग्रहण करना चाहे कर सकते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार तथा शिष्टाचार मिल जाए तो शिक्षा का सार्थक शब्द सोने पर सुहागा होगा। शिक्षा व्यक्ति के सर्वगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है। शिक्षा का आधार है साक्षरता। साक्षरता के नींव पर ही शिक्षा का भवन खड़ा है। जो व्यक्ति साक्षर नहीं है वह कभी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। भारत का प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य सावधानी और

शांतिपूर्वक चिंतन के द्वारा समझने का प्रयास करें। शिक्षा से ऐसे चरित्र का निर्माण करें जिससे विद्यार्थी जीवन की चुनौतियों का साहस और धैर्य से सामना कर सके। हर व्यक्ति की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने जीवन में सफलता की उच्चतम ऊंचाइयों को छूना चाहता है। किसी भी कार्य में सफलता के लिए प्रथम और महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है व्यक्ति का आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के लिए सबसे आवश्यक है संबंध कार्य के लिए पूरी तैयारी और दृढ़ इच्छा शक्ति, और यह तभी संभव है जब हमारे अंदर विनम्रता का भाव होगा। नम्रता एक सकारात्मक मनोभाव है। व्यक्ति की जीभ अत्यंत कोमल होती है, अतः 24 घंटे तेज दांतों के बीच रहकर भी अपना बचाव कर लेती है। विनम्रता से तात्पर्य है वाणी की मधुरता और सहजता, जो विरोध को समाप्त करने में सक्षम है। विनम्र व्यक्ति समाज के हर अवरोध को सरलता से पार कर पाता है तथा जीवन रूपी धारा में सहजता से बहता हुआ अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। यह संपूर्ण और समग्र व्यक्तित्व के विकास का माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने निर्धारित आदर्शों पर खरा उतरने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। हमारी वार्ता को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं यह मधुर गीत।

संस्कार समाज में स्वीकृत व परंपरागत जीवन आदर्श है जो उस समाज की संस्कृति से उत्पन्न होकर व्यक्ति के आचरण का अंग बन जाता है। अच्छी आदत और संस्कार के अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण देना उचित होगा। माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनसे आदरपूर्वक और विनम्र व्यवहार एक संस्कार है, लेकिन अपने सामान के सदा व्यवस्थित ढंग से रखने का व्यवहार आदत है। माता पिता गुरु के श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श करना एक संस्कार है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति से है। इसे संपूर्ण भारतीय समाज की स्वीकृति प्राप्त है और यह एक परंपरागत जीवन आदर्श भी है। इसे संस्कार कहते हैं, आदत नहीं। संस्कार और शिष्टाचार में थोड़ी अंतर है। शिष्टाचार लोक व्यवहार के लिए समाज द्वारा निर्धारित किया गया संस्कार है। भारतीय संस्कृति के अनुसार शिष्टाचार यह है कि हम बड़ों को प्रणाम या नमस्कार करते हैं या फिर हम उनके चरण स्पर्श भी करते हैं, लेकिन अंग्रेजी संस्कृति में शिष्टाचार के नाते सभी को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहते हैं। शिष्टाचार हमारे सामाजिक व्यवहार तक सीमित रहते हैं, परंतु संस्कार हमारे सामाजिक व्यवहार को मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी कीट पतंग सत्य अहिंसा भाईचारा सदाचार परोपकार समानता न्याय सबकी भलाई इत्यादि हमारी संस्कृतियों द्वारा मान किए गए हैं। हमारा जीवन भी एक अमूल्य पुस्तक है। हमें रोज नए नए अनुभव मिलते रहते हैं। विश्व के धर्माचार्य शताब्दियों से हमें पढ़ाते रहे हैं कि ईश्वर एक है और हम सब उनकी संतानें हैं। हमें एक परिवार के भाई बहन की तरह शांतिपूर्वक रहना चाहिए, किंतु हम इसे जीवन में चरितार्थ नहीं कर सके। जाति धर्म रंग भाषा राष्ट्रीय स्वार्थ आदि को लेकर संघर्ष करते रहे। शिक्षित और सभ्य होने का दावा करने वाले देशों ने ज्यादा शांति भंग की। हम कामना तो शांति की करते हैं, पर व्यवहार अशांति बढ़ाने वाला करते हैं। आज विचार करने वाली बात है कि हम संस्कार शिक्षा से शांति तथा शिष्टाचार का विकास कैसे करें। इसके लिए आध्यात्मिक पारिवारिक तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रथम स्तर पर परिवार में जिन्हें हम नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला कहते हैं, परिवार के सदस्यों को विशेषकर बच्चों को वासुदेव कुटुम्बकम के आदर्श का आध्यात्मिक आधार बताना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के बीच सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए हमें बच्चों में समानता का संस्कार जागृत करना होगा, ताकि वे समझे कि धर्म जाति रंग वर्ण लिंग आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। इसी तरह बच्चों में सहयोग का संस्कार जागृत करने के लिए हमें उन्हें बताना होगा कि सहयोग हमें विकास की ओर ले जाता है। इसी प्रकार हमें बच्चों के व्यक्तित्व में सत्य और अहिंसा संयम और सादगी देश प्रेम और देश सेवा आदि जीवन मूल्यों से संस्कारों का समावेश करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। नम्रता का एक अर्थ है तरलता या कोमलता। धातु कोमल नहीं होगी अथवा पिघलेगी नहीं तो सांचे में ढालकर सुंदर प्रतिमा का निर्माण कैसे होगा। अतः सुंदर प्रतिमा प्राप्त करने के लिए धातु को पिघलाना या नर्म बनाना आवश्यक है। मनुष्य में भी इतनी नम्रता होनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में वह विचलित होकर अपनी नम्रता को त्याग न दे। कई बार लोग किसी की नम्रता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नम्रता का अर्थ गलत बात का समर्थन करना या चुप रह जाना हरगिज नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक गलत बात का विरोध कर सही बात को सही ढंग से रखने की सामर्थ्य उत्पन्न करना है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी धर्मों के प्रति समानता तथा आदर का भाव जागृत किया जाना चाहिए। सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा अच्छा बुरा नहीं है। बच्चों को बताया जाना चाहिए कि धर्म कोई भी हो तोड़ने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली शक्ति है। धर्म भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। साधारण शब्दों में

धर्म के बहुत अर्थ है, जिनमें से कुछ ये है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार इत्यादि। धर्म वही जो प्रीति जगाए, भाईचारा हमें सिखाए, आंखों के आंसू भी पोछे और अमन के फूल खिलाए। इसी बीच आइए सुनते हैं एक मधुर गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में ये मधुर गीत। आइए हम अपनी वार्ता को जारी रखते हैं। पृथ्वी को हम धरती माता कहते हैं क्योंकि वह हमें भोजन के लिए अन्न, कंदमूल, फल देती है, वस्त्र के लिए कपास, रेशम देती है, नदी, झील, तालाब, झरने आदि से पीने के लिए पानी देती है, घर बनाने के लिए लकड़ी, इलाज के लिए जड़ी बूटी देती है। इन सब चीजों से वह माँ की तरह हमारा लालन पालन करती है, लेकिन हम अपनी धरती माता के उपकारों का बदला कैसे चुका रहे हैं? हम अंधाधुंध पैर काटकर उसका चीरहरण कर रहे हैं। शहर भर की गंदगी, कारखानों का दूषित जल और कचरा डालकर उसकी साफ सुथरी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। कचरे के ढेरों से निकलने वाली जहरीली और दुर्गंधपूर्ण गैसों से हमने उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया है। हमारी इन भूलों का यह फल हुआ कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर लगातार धरती का तापमान बढ़ा रही है। इससे धरती माँ को ऐसा बुखार चढ़ा है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। क्या धरती माँ के प्रति हमारा ऐसा व्यवहार क्षमा करने योग्य है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी से किसी ने पूछा, इस समय आपकी दृष्टि में भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? गांधी जी ने कहा, मेरे अनुसार इस समय सबसे बड़ी समस्या शिक्षित मनुष्यों की संवेदन शून्यता है। मनुष्य शिक्षित हो और संवेदन विहीन हो तो वह ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इससे धरती माँ को ऐसा बुखार चढ़ा है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। क्या धरती माँ के प्रति हमारा ऐसा व्यवहार क्षमा करने योग्य है? हमें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और भविष्य में हमने ऐसी भूल न करने का कोई वादा भी नहीं किया है। हमने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण फैलाकर धरती माँ को ही कष्ट में नहीं डाला, बल्कि हम भी इससे पीड़ित और परेशान हो रहे हैं, और इसका मुख्य कारण संस्कार शिक्षा की कमी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी से किसी ने पूछा, इस समय आपकी दृष्टि में भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? गांधी जी ने कहा, मेरे अनुसार इस समय सबसे बड़ी समस्या शिक्षित मनुष्यों की संविधान शून्यता है। मनुष्य शिक्षित होकर और संविधान विहीन हो तो वह ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। शिक्षा और संस्कार का एक अंग है एकता। एकता एक ऐसी मानसिकता का नाम है जिसमें एक ही भूभाग के निवासी या एक ही देश के नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं में आस्था, पारंपरिक अपनत्व की भावना तथा देश के प्रति सम्मान के भाव का समावेश होता है। इसमें खान पान, वेशभूषा, भाषा, क्षेत्रीयता, धर्म आदि की विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली अलगाव की भावना का काफी हद तक खत्म करने की शक्ति होती है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना जितनी प्रबल होती है, उतना ही वह इन विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली अलगाव की भावना को प्रभावहीन करने में सक्षम होती है। भारत विभिन्नताओं का देश है। राष्ट्रीय एकता की भावना ही सारे देशवासियों को अपने समस्त भेदभाव भुलाकर एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित करती है। भारत तो एक ही है, पर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अलग अलग है। जैसे एक ही उपवन के रंग बिरंगे फूल उसकी शोभा घटाती नहीं है, बढ़ाती है और अधिक आनंद प्रदान करते हैं। ध्यान रहे कि हमें अपनी विभिन्नताओं को अपनी शक्ति बनाना है, कमजोरी नहीं। यह कार्य शिक्षा के माध्यम से सरलता पूर्वक किया जा सकता है। कहा गया है कि संगठित होने पर हम विजयी होती है और विभाजित होने पर पराजित। राष्ट्रीय एकता देश के तीव्र विकास की प्रतीक है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या हम भूखे पेट विकास कर सकते हैं? नहीं, यह असंभव है। हमें भूख मिटाने के लिए दाल, रोटी, सब्जी की आवश्यकता होती है और इसे उगाने के लिए माटी की। माटी कभी जाति धर्म में

फर्क नहीं करती, माटी के बिना धरती पर जीवित रहना नामुमकिन है। तो आइए माटी पर आधारित एक ज्ञानपूर्ण कहानी सुनते हैं। कहते हैं विधाता ने एक दिन अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक एक उपहार लाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा जिसका उपहार श्रेष्ठतम होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देर थी, सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में पृथ्वी की ओर दौड़ने लगे। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने लाकर सामने रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं प्रसन्नता और संतोष की रेखा तक न उभरी। अभी भी एक सेवक आना शेष था, उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और वह सेवक आ गया। वह कागज की एक पुड़िया विधाता को देकर डरते डरते नीचे बैठ गया। विधाता ने पुड़िया खोली और कहा अरे यह क्या, इस पुड़िया में तो माटी बांध लाए हो। हाँ भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा, इस बात की बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार ले चलूं जो आपको पसंद आए। प्रभु, है तो यह माटी ही, पर यह वह माटी है जहाँ के लोगों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खुशी से अपने प्राण निछावर कर दिए। विधाता ने माटी को बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगा ली और कहा मेरे लिए माटी का उपहार ही सर्वोत्तम उपहार है। एक कहावत है, एक लगाए लाख पाए, मिट्टी के अलावा किसमें क्षमता है इतनी। मिट्टी में लगाए गए एक बीज से हजार लाख दाना मिलता है। फूलों में सुगंध, तरह तरह के फल फूल देने की क्षमता मिट्टी के अलावा और किसमें है। भारत की माटी में यही खास बात है, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। शिक्षा के दागों में पिरोया हुआ फूल है हमारा संस्कार, शिष्टाचार, एकता, शांति, मानवता, विनम्रता, कोमलता। ये सब मात्र शब्द नहीं है, इसे अपने जीवन में अपना कर अपने घर, गांव, समाज तथा देश की उन्नति का बीज बोए। भारत विश्व गुरु है, इसकी गरिमा कभी कम न होने पाए। आज की बेटियों की आवाज है मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दे, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दे। श्रोताओं, मिलना बिछड़ना, आना जाना, पाना खोना, ये तो कुदरत का नियम है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपकी दोस्त सिटी म्याचिन इस महिला जगत कार्यक्रम से विदा ले रही हूँ। तो आइए जाते जाते यह मधुर गीत आप सभी के लिए। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शिक्षा, संस्कार तथा शिष्टाचार विषय पर एक वार्ता। इस वार्ता की लेखिका है शोभा शर्मा तथा कार्यक्रम के सूत्रधार थे सिटिम यांगचिन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा मासिक कार्यक्रम महिला जगत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से गिटार वादन। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, कार्यक्रम रागरंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट जी से गिटार वादन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए निशामुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नेट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को जारी की 176 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त। विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार करीब 6 वर्ष बाद शिप की लाद दर्रे के माध्यम से फिर शुरू। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को बनाया जाएगा सरल। राष्ट्रमंडल खेल में 16 पदक जीतकर पदक तालिका में 4वें स्थान पर पहुंचा भारत। तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीता। टेनिस में भारत के राजकुमार रामनाथन और विजय सुदूर प्रशांत ने बॉर्न ओपन 2026 में डबल्स का जीता खिताब। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे करने नहीं देती। इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ करियर, पारिवारिक जीवन और लोगों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने आग्रह

दुनिया की सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले न छिपाए, उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अलग थलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माई भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितेशी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखे जाने चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहे और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एक अत्यंत सुरक्षित, एनक्रिप्टेड और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें तकनीकी और परिचालन सुरक्षा के कई स्तर होते हैं जो परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय तक इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं। श्री नड्डा ने परीक्षा के लिए किए गए व्यापक सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों को ये सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि हर परीक्षार्थी को एक सुगम, सुरक्षित और परेशानी मुक्त परीक्षा प्रक्रिया का अनुभव हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नीट पीजी 2026 के लिए कुल 2,73,183 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। परीक्षा लगभग 340 शहरों और 1300 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्य को कर स्थानांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए के अतिरिक्त किश्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक स्थानांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी धनराशि में अरुणाचल प्रदेश को 1,476 करोड़ रुपए शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपनी आतंकी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना और घरेलू विफलताओं का दोष भारत पर मढ़ना पाकिस्तान की नीति बन गई है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जोटन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वी के सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जोटन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है।
सपोर्टिंग द रियल हीरोज द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया थीम पर आधारित यह आयोजन देश के सैनिकों के समर्पण, साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और नागरिकों को सक्रिय भागीदारी के

0: माध्यम से उनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज तिरंगे के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, जो आज भारत के गौरव और आकांक्षाओं का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में शिपकलीला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार करीब 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो गया है। किन्नौर जिले के पूह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नमग्या में आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 56 ट्रेड मार्ट का उद्घाटन किया और 17 व्यापारियों के दल को सीमा पार व्यापार के लिए रवाना किया। कोविड-19 महामारी के बाद वर्ष 2020 से यह व्यापार बंद था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और काउंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी सूचनाओं के प्रसार पर श्री दुरईस्वामी ने कहा कि चीन सरकार भी इस बारे में चिंतित है और आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दूतावास गलत सूचनाओं से निपटने के लिए तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग-अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। भारत के खाते में सबसे ज्यादा 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉट पुट और पुरुषों की ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। यह इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक है। इसके साथ ही भारतीय मुक्केबाजों ने 3 रजत पदक भी अपने नाम किए हैं। मुक्केबाज प्रीति पवार, जस्मीन लंबूरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांगस, अरुंधति चौधरी, सचिन सीवाच और अंकुश पांगल ने स्वर्ण, जबकि जादुमणि सिंह, लवलीना बोरगोहें और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीते। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉर्ट फुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण, जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashwani, the news read by Hage Ani. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals. The Prime Minister urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS soldiers also, were of the opinion that it is the collective responsibility of society to promote such campaigns for drug-free country. Piyush Saini from Lovely Professional University, Phagwara, said that

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:11 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरूखा। कार्यक्रम जरूखा में हम आपको अवगत करवाएंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। आइए पहले जानते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम शेदुल्लरी में आप सुनेंगे जमयांग छोकरलिंग मठ के उमजे तुप्तन वांगचू और साथियों से यिदम तमरिंगकुक दाखंग। आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिली कवाली, इनमें पहला कवाली का आप आनंद लेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में और अंतिम कवाली का आप आनंद लेंगे जॉली LLB 2 फिल्म से सुखवेंद्र सिंह मुर्तजा मुस्तफा।

और कदीर मुस्तफा के आवाजों में। आज शाम 7:25 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ। आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे वीर जारा फिल्म से लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार के युगल आवाजों में यह गीत। आज रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से।

का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 3 अगस्त 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर के 2 बजे मिटे न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद शिव महिमा भक्ति गीत। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद तंगसा आधुनिक गीतों का, केंगलिंग केंगलांग, जोसम लोंगफी, कोचुंग लोंगड़ी, लीसा मोसांग और मुंगतंग मोसांग के युगल आवाजों में। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पीएम श्री जे एन वी दवांग के 8वीं कक्षा के छात्र कुमारी देवी प्रधान से बुनाई और हस्तशिल्प की कला के विषय पर उनका विचार। कल दोपहर 3:33 पर नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म से दर्शन रावल और रोचक कौली के युगल आवाजों में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में, केदारनाथ फिल्म से देवनेकी की आवाज में, आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा की आवाजों में, और टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नुरान की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कल 3:50 पर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे गजनी फिल्म से बनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में, खट्टा मीठा फिल्म से के और सुनिधि चौहान की आवाजों में, सिंग इज किंग फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में, विक्की डॉनर फिल्म से आयुष्मान खुराना की आवाज में, बागी फिल्म से अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाजों में, लुटेरा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में, लव यात्री फिल्म से अतिफ असलम की आवाज में, जब वी मेट फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में, बिल्लू फिल्म से सोहम चक्रवर्ती, अकृति कक्कर और मोनाली के आवाजों में, और एक बहेदी लीला फिल्म से उजैर जायसवाल की आवाज में चंद हिंदी फिल्मी गीत। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे अली अकबर खान से सरोद वादन। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे मनपा कार्यक्रम नमदर लरिम, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे क्लासिक उपन्यास लामा द्रुक्पा कुनले नमधर का तीसरा भाग। कल शाम 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर मुनपा कार्यक्रम त्रैतन लपचा, शाम 6 बजे लड़िम सिरा, 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। कल शाम 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम जदन लड़िम में आप सुनेंगे सेरा जी जमयांग चोकरलिंग मठ के उमजे तुप्तन वांगचे और साथियों से यदम तमरिन कुक दाखंग का शेष भाग। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। कल शाम 7:30 पर फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत, इनमें पहला गीत का आप आनंद लेंगे कयामत से कयामत तक फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल आवाजों में, फिल्म 83 से अरिजीत सिंह की आवाज में,
और अंतिम गीत का

आबाना लेंगे। फिल्म सैम बहादुर से शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार के युगल आवाजों में कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। कल रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। इसके अंतर्गत आप आने लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम झरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो के अनुसार इस वक्त संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

Yeah.

Sous-titrage Société Radio-Canada

Kinjutsu,

Yeah.

天求龙王佛爱戒爱度戒度面戒迦那娑婆三地俱胜天道天佛道

0: 有罪都结成为人间若怪最艰难所爱当年年节速度就别老远期间世界看见点点为老远将来
1: 点点

0: 这边讲说都不能说
1: 那的万岁大学里面这
0: 边也上面都把这些年你看这些天天很多的人不说过过

Jesus,

Yeah, no.

Oh,

Yeah,

Yeah.

0: 나이에 나가다다 시든 레리마 세라지 잠양 최골 링 다상 움세 두든 와주스 그리소 이담 돈린 다강 산나움불 우속말 못해야 랭이 나가의 노건덥 주제 그로치 시든 레리마 산나사 랭이 우담치 아게시반이 따방 캐슨 주소 대신 없대 문박 레림바나 차상 뒤돌 랭이 녹적 주제 니송어도 나죽불 레림 아게시반이 딜리기야 릴레이 주소 나 힌디카 생유님 주제 니스티카름 랭치 인지카 생유스나사
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.com

0: expenses.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जरथॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जरथॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance use. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants included My Bharat and National Service Scheme volunteers as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity, and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainty. The report attributed the improved outlook to a broad-based pickup in high

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम कवाली का यह आनंद लेते हैं जॉली LLB 2 फिल्म से सुखवेंद्र सिंह, मुर्तजा मुस्तफा और कदीर मुस्तफा के आवाजों में।

0: जॉली एलएलबी 2 फिल्म के इसी कवाली के साथ ही कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिल कवाली अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो में इस वक्त समय हो चला है शाम के 7:26 और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ और इनके साथ सहयोग दे रहे हैं कानू घोष और नालिनी जी। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ।
1: आज हम आपको एक बहुत मशहूर कौमी तराना सिखाएंगे। उसके बोल मालूम है क्या है? सारे जहां से अच्छा, ये गाना आपने सुना है?
2: यस सर।
1: तो आप लोग सीखेंगे ना?
2: यस सर।
1: और हमारे साथ नलिनी जी भी आपको ये गाना सिखाएंगे। आपको मालूम है ये गाना किसने लिखा है? इकबाल। बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं जिन्होंने देश की तारीफ में ये गाना बहुत साल पहले लिखा है। तो आप लोग कागज पेंसिल निकालिए और गाना लिखिए। सारे जहां से अच्छा,
2: सारे जहां से अच्छा,
1: हिंदू

0: लिख लिया ना,
1: आगे लिखिए हम बुलबुले, हम बुलबुले, बुलबुले नहीं बुलबुले, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा,
0: तो बच्चों ये तो हो गई इसकी स्थाई। अब लिखिए इसका पहला अंतर, पर्वत वो, हाँ पर्वत नहीं पर्वत, बा लिखना है, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, और इसके बाद फिर पहली लाइन आ गई कि सारे यहां से। अच्छा तो अब पहला अंतरा लिख लिया ना आपने, अब दूसरा अंतरा लिखिए, गोदी में खेलती हैं, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, आगे लिखिए गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा, इसके बाद फिर पहली लाइन आ जाएगी सारे जहां से। अच्छा तो अब तीसरा अंतरा लिखिए, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, ये दो बार तो ऐसे आएगा है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, और तीसरी बार हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदोस्तान हमारा, और इसके बाद फिर पहली लाइन आएगी सारे जहां से। अच्छा तो आप लोगों ने ये गाना लिख लिया ना सबने, अच्छा इस गाने की ताल है बच्चों कहरवा, क्या नाम है इसका ताल का, और इसमें चार मात्रा होती हैं, कितनी मात्रा होती हैं,
2: चार,
0: तो इसको पहले तबले पे सुनो।

ये तो इसकी ताल हुई। अब आपके समझ में आ गया कि कहरवे की ताल क्या होती है। अब बच्चों इस गाने को हम लय में पढ़ के आपको बताएंगे और आपने भी साथ साथ याद करना है ताकि आपको इस गाने की लय की बोल बाट समझ में आ जाए।

0: बच्चों, अब पूरे गाने की आपको लय की बोल बाट समझ में आ गई ना?
1: यस सर।
0: अच्छा, अब इसको हम आपको स्वर में सिखाएंगे। तो नलनी जी, ये गाना कौन से स्वर से है?
2: पहले काले से।
0: पहले काले से। तो बाजे में देखिए, पहला काला कहाँ है?

0: मजहब नहीं सिखाता। अब इसको स्वर में देखिए कैसे है।
1: मजहब नहीं सिखाता,
2: मजहब नहीं सिखाता।
0: ये अंतरा नी से शुरू होगा।

श्रोता, अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ के अंतर्गत मोहम्मद इकबाल के लिखे उर्दू भाषा में एक गीत का पाठ। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। अब से कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यारम तासिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, देश के युवाओं का शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है। आज नई दिल्ली में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत के मौके पर वर्चुअली बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत नशे के खिलाफ 100 हफ्ते तक चलने वाले देशव्यापी जनभागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। श्री मोदी ने कहा कि नशामुक्त समाज बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के मकसद से देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। उन्होंने परिवारों से आग्रह किया कि वे सामाजिक बदनामी के डर से नशे की लत के मामलों को छिपाए नहीं। श्री मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और प्रोफेसरों से भी अपील की कि वे छात्रों के साथ नशे के खतरों पर नियमित रूप से चर्चा करें और कैंपस में जागरूकता अभियान चलाएं। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त अरुणाचल के तहत 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने वाले मेगा कैंपेन का राज्य स्तरीय लॉन्च इवेंट आज ईटानगर के जोलांग स्थित ब्रह्म कुमारी राज योग सेंटर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री, अंतर्राज्य सीमा मामलों पीएचई और जल आपूर्ति मंत्री मनातुंग मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जबकि पुलिस महानिदेशक शिव दर्शन सिंह जमुआल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए श्री नातुंग ने युवाओं से नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने का आग्रह किया और नशा मुक्त राज्य बनाने की शपथ लेने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय मंत्रालयों के सहयोग से ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन एंटी एडिक्शन सेंटर द्वारा आयोजित इस कैंपेन का मकसद नागरिकों को नशे को न कहना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के केंद्रीय हिस्से से लगभग 2,117 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी करने को मंजूरी दी। मंजूर की गई इस मदद में अरुणाचल प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहले किश्त के तौर पर लगभग 44 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने बताया कि मॉनसून की शुरुआत से ही सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार ने हर संभव मदद दी है, जिसमें जरूरत पड़ने पर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और रक्षा मंत्रालय से लॉजिस्टिकल सहायता देना शामिल है। नुकसान का आकलन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में पहले ही अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय केंद्रीय टीमें IMCT भेजी जा चुकी है। इस मंजूरी का मकसद बाढ़ प्रभावित राज्यों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करना है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पर नायक ने सुश्री जनवरी ताली और सुश्री हाचू लम्बो को लद्दाख के जंस्कार इलाके में माउंटेन कूल की चौथी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने की शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इस उपलब्धि को राज्य के लिए बेहद गर्व का पल बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन दोनों पर्वतारोहियों ने प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया है। राज्यपाल ने कहा कि माउंट कून भारत में ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ाई वाली सबसे मुश्किल जगहों में से एक है, जो अपनी खरी बर्फीली ढलानों, खतरनाक ग्लेशियरों, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम के

वीर ज़ारा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन्हीं नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है लोगर ठकुरन वाला फिरोजपुर पंजाब के स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनोर सिंह और शुभदीप सिंह जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है रोटी फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के गीत रचयिता हैं आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश में प्राप्त हुई है नगोड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है मेरा गांव मेरा देश 1971 फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। इस गीत के गीत रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इस वक्त फाइनल ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मेहरनगर उमरखेद महाराष्ट्र के अभिजीत गवाकर, मिसेस सरिता गवनकर राही, प्रिंस एकांश गवनकर जी की ओर से, और बदलापुर मुंबई के सिद्धांत गवनकर, प्रणीता गवनकर और लाडला गवनकर जी की ओर से, और आकर हाइट्स बहादुर नागपुर के वैशाली शैलेश गवनकर, सुमित गवनकर और मिस ध्वानी गवनकर जी की ओर से। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए पेश है काजल फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने। इस गीत के गीत रचयिता है साहिर लुधियानवी तथा संगीत संयोजन है रवि किशन।

श्रोताओं, अभी आप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मेरठ के दिग्दर्शन गौर और कविता गौर जी की ओर से, साथ ही निमानाबाद जिंद हरियाणा के जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है याराना 1981 फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। इस गीत के गीत रचिता है अनजान तथा संगीत संयोजन है राजेश रोशन।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है असम के हितेंद्र दास जी की ओर से। हितेंद्र दास जी, आपकी फरमाइश पर लीजिए पेश है दिल ए नादान फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इस गीत के गीत रचयिता है नक्श अजीज तथा संगीत संयोजन है खयाम जी।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्सा फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। दोबारा सुनिएगा 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा ये रोमानी और यादवरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का।

आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार।

0: सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में कल हुई स्वर्ण पदकों की बारिश पे, और साथ साथ नजर होगी आज होने वाले शानदार भव्य क्लोजिंग सेरेमनी पर भी बात की जाएगी आज कार्यक्रम में। तन्वी शर्मा के उस इतिहास की जो उन्होंने ताइपाई ओपन के बैडमिंटन कोर्ट पर रचा है, और संडे है तो बिल्कुल दी जाएगी फिटनेस की थोड़ी सी डोज। लेकिन सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण समेत 10 पदक जीते। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान 7 पदकों के साथ संपन्न किया। 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक शामिल। तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता, और NCC साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन और फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 84वां संस्करण नई दिल्ली सहित पूरे देश में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले आज कार्यक्रम शुरू होगा ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की हलचल के साथ, जो अब अपने समापन के निकट पहुंच चुका है, और अब से कुछ घंटों बाद इस खेल का भव्य समापन समारोह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों पे हमारे साथ अधिक जानकारी लेकर के जुड़े रहेंगे हमारे सहयोगी विशेष। लेकिन पहले बात की जाए शनिवार के दिन की, यानी कल के दिन की, जहां भारतीय मुक्केबाजों की धमक से गुंजायमान होता नजर आया पूरा का पूरा ग्लासगो, और पदक तालिका में 11वें स्थान से शुरू हुआ दिन समाप्त होते होते भारत को चौथे स्थान पर लेकर आ गया। और इस कहानी का एकमात्र किरदार थे भारतीय मुक्केबाज, जो जब रिंग में उतरे तो स्वर्ण पदक की बारिश होती नजर आई। अपने फाइनल मुकाबले खेलने उतरे 10 भारतीय मुक्केबाजों में से 7 ने जीत दर्ज करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते, जबकि 3 मुक्केबाजों ने रजत पदक भारत की झोली में डाले। आइए सुनते हैं भारतीय मुक्केबाजों के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय मुक्केबाजों की ताकत के आगे दुनिया भर के दिग्गज बेअसर नजर आए, जहां रिंग में उतरते भारतीय मुक्केबाजों ने एक के बाद एक स्वर्ण पदकों की झड़ी लगा दी। प्रीति पवार ने मुक्केबाजी में भारत के लिए खाता खोला, जिन्होंने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा के स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलो कैटेगरी में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्स को 5-0 से शिकस्त कर खिताब अपने नाम किया। साक्षी ने 51 किलोग्राम वर्ग के खिताबी मैच में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से हराकर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अगले ही मुकाबले में प्रिया घणगस ने कनाडा की मैरी बथुल अल अहमदीह को 4-1 से मात देकर पदक तालिका में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक अंकित कर दिया। मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों में सचिन सिवाच ने इंग्लैंड के मुक्केबाज के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड अपने नाम किया। अस्सी किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। चैंपियन इन द रेड कॉर्नर अंकुश ने इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू को 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। भारत के लिए पदकों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा। नरेंद्र ने पुरुष के 90 किलो से अधिक वर्ग में रजत पदक जीता। जादुमणि सिंह को भी ऑस्ट्रेलिया के जाय डिक्सन के खिलाफ 5-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जबकि महिलाओं में लवलीना बोरगोहेन को 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
0: तो विशेष क्या कहा जाए कि शनिवार का दिन भारत के लिए बॉक्सर्स डे शामिल हुआ।
2: ये शक्ति मैं कहना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बॉक्सर्स डे नहीं, गोल्डन डे साबित हुआ है। भारत ने 7 गोल्ड मेडल भारतीय मुक्केबाजों ने जीते और 3 जो है सिल्वर मेडल उनकी झोली में डाले।
0: जी बिल्कुल, और एक गोल्ड मेडल और भी आया इसके इतर। लेकिन क्या कहा जा सकता है इन मुक्केबाजों के प्रदर्शन पे। हमने रिपोर्ट में सुना 10 खिलाड़ी थे, उन पे कितनी चर्चा हो पाएगी वो तो संभव नहीं है, लेकिन क्या सबसे खास आउटपुट रहे इन 10 खिलाड़ियों के, क्या कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं भारत की इस मेडल टैली में।
2: शक्ति सेमीफाइनल से पहले सब जगह खबर चल रही थी कि 10 खिलाड़ी 10 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित कर लिए हैं इसमें। लेकिन खास बात यह रही कि 10 के 10 ने फाइनल में जगह बनाई, जिसमें से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर हमें प्राप्त हुए। साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, प्रिया घांगस, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल जैसे

0: खिलाड़ियों ने अलग अलग वेट कैटेगरीज में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वहीं सिल्वर मेडल की अगर बात करें तो लवलीना बोरगोहेन और जादूमणि सिंह नरेंद्र, इन तीनों ने भारत को सिल्वर मेडल जिताया। तो जो एक बात होती है सेमीफाइनल से पहले कि ब्रॉन्ज तो पक्का ही हो गया, ऐसा ना करते हुए भारतीय मुक्केबाजों ने भारत को गोल्ड और सिल्वर जो है उनकी झोली में डाला।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक पे दाव लगाया और हर मुक्का जो है भारत के लिए एक बेहतर पदक और एक बेहतर उम्मीद लेकर के आया। और अब बात की जाए भारतीय पैरा खिलाड़ियों की, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के साथ भारत का पैरा इवेंट्स में अभियान 7 पदक के साथ संपन्न हुआ। इनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रस्तुत है भारतीय पैरा टीम के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।
2: पैरा इवेंट्स में भारत के लिए पदकों की शुरुआत झंडू कुमार ने कांस्य पदक के साथ की। भारोत्तोलक झंडू कुमार ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के भारत के लिए ग्लासगो में पहला पदक जीता। रजत पदक के लिए हुए कड़े मुकाबले में वो सिर्फ 0.1 से पीछे रहे। एथलेटिक्स में महिलाओं की शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक और शिल्पा कंचुगर को पालू शायला ने 7.26 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। पुरुषों के 100 मीटर T47 दौड़ में दिलीप महादु गावित ने 10.71 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। पुरुषों के शॉर्ट पुट F57 में भी भारत ने डबल पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण और रजत पदक जीते। सोमन राणा ने 13.40 मीटर के विनिंग थ्रो के साथ पहला स्थान और शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: सिर्फ खिलाड़ियों ने पदक ही नहीं जीते, जब हम डबल पोडियम की बात करते हैं तो बताता है कि आपके उस इवेंट में किस प्रकार का दबदबा है, जब शीर्ष 3 में से 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी आपके देश के होते हैं और बहुत गौरवमय उपस्थिति होती है। भारत ने इस बार 2 से 3 कैटेगरी में ऐसे डबल पोडियम फिनिश किए और खासकर वो 100 मीटर की दौड़ जिसमें भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों अपनी झोली में डाला। और अब एथलेटिक्स की बात कर ही ली है तो बात की जाए इस पूरे खेल आयोजन में सबसे अधिक सुर्खियां बटोरने वाले भारत के लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुरवीर सिंह की, जिन्होंने कल एक और पदक भारत के खाते में जोड़ा। गुरवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतते हुए इतिहास रचा। उन्होंने 13:24.95 का समय लेते हुए यह दौड़ पूरी की। गुरवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं।
3: But the man who steps up to the podium right now is a history maker. He did so in the 10,000 meters and he's done so in the 5,000 meters as well. The first ever medalist from India in this discipline, Gulveer Singh.
1: पहले 10,000 मीटर और फिर 5,000 मीटर विशेष, कितना ये खास खिलाड़ी है भारत के लिए।
0: ये गुलवीर जो है भारत के लिए बहुत ही खास खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत को पदक दिलाया है जो कि परंपरागत तौर पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए सही नहीं माना जाता है, या उसके लिए उनकी जो बॉडी है वो ठीक नहीं मानी जाती। ये उनको ये पदक भारत के लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने एक ही कॉमनवेल्थ इवेंट में जो है दो मेडल जीते हैं और ये डबल पोडियम फिनिश करने वाले भी पहले भारतीय बने हैं। गुलवीर ने ट्रेडिशनल लॉन्ग डिस्टेंस जो सुपर पावर्स कहे जाते हैं कीनिया और युगांडा, उनके खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए ये मेडल अपने नाम किए हैं।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि इसके पहले जब उन्होंने 10,000 मीटर में रजत पदक जीता था तो भी काफी चर्चाएं उनकी हुई थी। एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप 24 से 25 चक्कर लगाते हैं उस 400 मीटर के ट्रैक के, जो आपके स्टैमिना के साथ, आपके पेशेंस के साथ, आपके मनोवैज्ञानिक ध्यान की भी बहुत ज्यादा परीक्षा लेता है। आपको लगातार चक्कर लगाने हैं, आखिरी समय तक अपनी स्पीड को बचा के रखना है और फिर आखिरी के 100, 150, 200 मीटर में, जो कल भी देखने को मिला और 10,000 मीटर की दौड़ में भी था, एक शानदार स्प्रिंट आती और भारत को पोडियम तक लेकर के जाती है। और भारत की अगर पदक तालिका की बात की जाए तो 39 पदक हो चुके हैं, चौथे स्थान पर भारत है, 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। चेरी ऑन द केक भारत के लिए इस आयोजन में रहा है जूडो, जिससे 2 स्वर्ण आए, 1 रजत आया, 1 कांस्य पदक आया। महत्वाकांक्षा शायद नहीं थी, लेकिन भारतीय जूडो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे देखा जा सकता है विशेष?
0: देखिए, जूडो की बात करें शक्ति, तो यह जो इवेंट रहा है इसमें भारत को पहला गोल्ड हासिल हुआ है। 1990 में यह कॉमनवेल्थ गेम में इंट्रोड्यूस किया गया था जूडो को, और उसके बाद से भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है वो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हमें देखने को मिला है। अस्मिता

0: जो है वो पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। वहीं हर्ष सिंह 60 किलोग्राम में पहले ऐसे पुरुष बने जिन्होंने मतलब भारत के लिए गोल्ड जीता। यामिनी मौर्य और उन्नति शर्मा ने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतकर भारत के मान को बढ़ाया है।
1: जी बिल्कुल, और मान को बढ़ाया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन तमाम पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बात की जाए बैडमिंटन कोर्ट की, जहां एक इतिहास आज रचा है। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ने, जिन्होंने ताइपे ओपन बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीता, 17 वर्षीय तन्वी ने इस खिताब को जीतने वाली किसी भी कैटेगरी की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा है। ये उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टाइटल है।
2: तन्वी शर्मा ने आज महिला सिंगल्स फाइनल में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त गुएन थुई लिन को 21-16, 21-16 से हराकर ताइपे ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। वह साइना नेहवाल के बाद ताइपे ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी हैं। साइना ने 2008 में यह खिताब जीता था। इस जीत के साथ ही तन्वी ने इस टूर्नामेंट में भारत का 17 साल का खिताबी सूखा भी समाप्त किया। 2009 में टूर्नामेंट के ग्रांड प्री गोल्ड दौर में ज्वाला गुट्टा और वी दिजू की मिक्स डबल्स जोड़ी की जीत के बाद यह देश की तीसरी जीत है। तन्वी ने पूरे फाइनल में दबदबा बनाए रखा और बेहद संतुलित खेल दिखाते हुए सिर्फ 36 मिनट में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वह सुपर 300 या उससे ऊंचे स्तर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला सिंगल शटलर बन गई हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात की जाए संडे ऑन साइकिल की, संडे के फिटनेस डोज की। भारत की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन एक्सपीडिशन 2026 का भव्य फ्लैग ऑफ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम विशेष रूप से उपस्थित थी। साइक्लोथॉन को झंडी दिखाते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की आजादी की 79 वर्ष के जश्न के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 79 एनसीसी कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। और एनसीसी, उन्होंने कहा कि फिटनेस अनुशासन और समाज में सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ भी करवा रहे हैं।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: जी, और इस मौके पर ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम ने युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेवर गिव अप की बात का ध्यान रखना चाहिए।
4: मुझे बहुत अच्छा लगा आज मौके में मुझे भी बुलाया गया है और ये साइक्लोथॉन 2026 दिल्ली में हुआ है, युवाओं लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और मैं आ रही हूँ कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए।
1: संडे ऑन साइकिल का भी 84वां संस्करण आज ही शुरू किया गया, नशा मुक्ति की थीम पर विशेष। क्या संदेश है साइकिल ऑन संडे?
0: शक्ति, अगर बात करें संडे ऑन साइकिल के संदेशों की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर, उसके बाद प्रदूषण से मुक्ति और ईंधन की बचत के साथ साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम संडे ऑन साइकिल के इस इनिशिएटिव द्वारा किया जाता है, जहां हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं इस प्रतियोगिता।
1: जी बिल्कुल, हर वर्ग के लोग आते हैं, क्या युवा क्या बुजुर्ग, और जो जोश देखने को मिलता है सुबह सुबह शहरों की सड़कों पे, लोग आते हैं, साइकिल चलाते हैं, फिटनेस का संदेश देते हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि सिर्फ फिटनेस नहीं, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी है ये साइकिल। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या।

0: के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आवाम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है।

0: आरबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक

0: प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरल में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी बांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign. A surge.

0: Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. That's all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित न्यूज एट 9। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। श्रोताओं, आइए जाते जाते हम आपको अवगत करवाते हैं कल के शेष कार्यक्रमों से। कल दोपहर 3:33 पर कार्यक्रम मेरी बात, कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण और कल रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिन्दी फिल्म गीत। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी खिदमत में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री तुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियंत्रण के सहायक श्री